संगत में लगा, रात में नित चल चल जा, शब्द सुरत पर जा करे, शब्द सुरत पर जा करे, सतगुर पर

छिल अलूरी चटणी साध न पुजे लख लख मेवा लाख भगत जगत विच लिख न गए गुर सिखी देवा लाख भगत जगत

गुरु सवारी साध संग जीओ गुरु बख्शी फतेह अर्ज कर रहे हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बेनती है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी अपार रहमत, अपार कृपा सदका साध संगत जी दी अथाह श्रद्धा पूर्ण मिलवर्तन अते संत बाबा सुच्चा सिंह जी दी उच्ची सुच्ची सोच सदका 9, 10, 11, 12 अते 13 अक्टूबर सन 1991 नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन पवित्र हजूरी विच प्रारंभ होया अदुत्ती गुरमत संगीत सम्मेलन, जिस विच दुनिया भर दे मन्ने परमन्ने रागी सिंघां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच अंकित शुद्ध 31 रागां विच रची गुरबाणी दा मनोहर कीर्तन करके लखूखां संगतां दीआं असीसां प्राप्त कीतीआं अते अपना जन्म सफला कीता। अदुत्ती कीर्तन दरबार विचों रिकॉर्ड कीते 31 रागां विच 61 शब्दां दीआं 16 आडियो कैसटां दा सैट असीं पहली बार संगतां दी सेवा विच भेंट करदिआं परम आनंद महसूस कर रहे हां। इह सारा उद्यम अखंड कीर्तन दे सोमे श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर जी दी सेवा विच बड़ी निम्रता अते अतुट श्रद्धा सहित समर्पित कीता गया। असी हां सात संगत जी दे दासरे गुरुद्वारा गुर ज्ञान प्रकाश जवद्दी कलां लुधियाना पंजाब इंडिया। इस लड़ी दा पहला राग श्री राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी राग तरतीब विच श्री राग नूं प्रथम स्थान प्राप्त होया है। रागन में श्री राग पारस पखान है। श्री राग बड़ा पुरातन मधुर अते कठिन राग है। श्री राग नूं मुड़ सुरजीती दा राग भी मन्या गया है। इस राग विच ऋषव अते धैवत कोमल लगदे हन, मध्यम तीबर अते बाकी सारे शुद्ध स्वर प्रयोग हुंदे हन। इस दा बादी रे ते संबादी पा गायन समा रात्रि दा प्रथम पहर है। इसे राग विच हुण सरवण करो 2 शब्दां दा गायन। पहला शब्द भगत रविदास जी दा उच्चारण कीता होया है। शब्द दी आरंभ दी तुक है तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा। इस राग नूं गायन कर रहे हन प्रिंसिपल बलदेव सिंह जी अते दूजा शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी दा उच्चारण कीता होया है। इस दी आरंभली तुक रंग रत्ता मेरा साहिब रव रहा भरपूर। इस शब्द दा कीर्तन कर रहे हन बीबी गीता कौर पेंटल जी। सब तो पहला शब्द प्रिंसिपल बलदेव सिंह जी दी आवाज विच जिस दी आरंभली तुक तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा।

चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख भंज। चीत आवे ता श्रद्धा पूरी, चीत आवे ता कबो नजूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरे दियो रंग लाए। चीत आवे ता सर्ग को राजा, चीत आवे ता पूरे काजा। चीत आवे ता रंग गुलाल, चीत आवे ता सदा निहाल। चीत आवे ता सदन भरंता, चीत आवे ता सब रंग माणे। चीत आवे ता चूकी काणे, चीत आवे ता सहज घर पाया। चीत आवे ता सुन समाया, चीत आवे ता सुन समाया। चीत आवे सद कीर्तन करता,

भगत कबीर जी का इस शब्द है। इस शब्द के विच भगत कबीर जी इंसान नू जीव नू इसकी जिंदगी के अखीर दे विच इसके नाल की हुंदा है उसके मुतलक इसनू सुचेत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, जगा रहे हैं कि अकाल पुरख वालों जीवन की जो एनर्जी सानू प्राप्त हुई है उस एनर्जी नू असीं किवें यूटिलाइज करते हैं, किवें वरतते हैं, किस किस चीज उते उस एनर्जी नू असीं स्पेंड करते हैं उसका सातों हिसाब किताब पूछा।

कहने पछतावा ही पछतावा। और उस पछतावे बनना कुछ नहीं, सिर्फ रोना ही रोना है रूने पछतावे। इस श्लोक इस शब्द महाराज जी ने यह आख्या है, जम मार्ग पंथ ना सूझई। कहते शरीर चो जदो रूह ने निकलना है, जमा दे वस दे विच इसने होना है, और जिस रस्ते दे उत्ते इसनु ले जाया जाना है, उस रस्ते दे उत्ते इसनु कुछ भी इसने ना अकल ने कम करना, ना दिमाग ने कम करना, ना इसकी विद्या ने कम करना, ना इसकी सियाणप ने कम करना है। इसनु कुछ भी सुझना नहीं है कि हुण मैं की करा, किथे फस गया, किसनु पुकारा। जम मार्ग पंथ न सुझे, उस पंथ ते फिर कुछ नहीं सुझना। नहीं तो इंसान कोशिश तो करता ही है ना कुछ उथे कुछ नहीं सुझना, टोटली हेल्पलेस होना है। इंडिविजुअल जो हुण है इतना ही इंडिविजुअल रहेगा, तमाम चीजां नू एक्सपीरियंस करन वाला फील करन वाला इंडिविजुअल जरूर रहेगा, लेकिन सिर्फ बॉडी ही नहीं होगी, सिर्फ इतना ही फर्क। पेन, विछोड़ा, लॉस, अटैचमेंट, सब कुछ महसूस होएगा, लेकिन शरीर नहीं होएगा। जब मार्ग पंथ न सुझ जाई, कुछ भी सुझना नहीं है। अगे चलते हैं, और राह अजिहा है एथे वर्गियां रौनक नहीं है, ओजड़ बिल्कुल उजाड़ अंध, फिर थिक डार्कनेस है, गुबारों का गुबार ही गुबार है। जब मार्ग पंथ में सूझी ओजड़ अंध गुबारों का, अगे चल दे ना जल, इंडिविजुअल नु पानी पीन नु दिल करेगा पर कहते पानी नहीं मिलना, ना जल, लेफ तुड़ाइया, ना लेफ तुड़ाइया रजाइया, खूबसूरत बिस्तरे इसका आराम करने दिल करेगा, लेकिन इसनु ओ नहीं मिलना, ना जल लेफ तुड़ाइया, ना भोजन प्रकार होगा, ना प्रकार प्रकार दे तरह तरह भोजन मिलने, कुछ नहीं मिलना। पर क्योंकि इंडिविजुअल तो ओही है ना, जिस दिया आदतां हन, अच्छे बिस्तरियां ते सौण दियां, अच्छा खान दियां, अच्छा पहनन दियां, वो तमाम चीजां दी अटैचमेंट, उन्हां तमाम चीजां दी इच्छा वासना इस दे अंदर होएगी, और तड़पेगा कितना क्योंकि इसनु वो प्राप्त नहीं होएगा। ना जल लेफ तुलाइया, ना भोजन प्रकारो वा, भोजन पाओ ना ठंडा पानी, कुछ नहीं मिलेगा। नाल पाओ आख्या है, पाओ के साडा हुण कोई ना कोई केयर करदा है, इस जगत दे विच असी एक दूसरे की केयर तो करदे हां ना, कोई सानू केयर करदा, पानी का गिलास ते पकड़ांदा है, कहिंदे उत्थे कोई पाओ करन वाला नहीं है, वह जम जड़े हन वह पाओ करन वाले नहीं हन, केयर करन वाले नहीं हन, उन्हां दा काम ही नहीं है। भोजन ना भोजन पाओ, ना ठंडा पानी, ना कापड़ शिंगारो, दिल करेगा सुंदर बनन नू, सुंदर सुंदर कपड़े पहनन नू, शिंगार करन, जो कुछ भी जिंदगी च कीता है उदों भी इंडिविजुअल दा ओह ही कुछ करन नू दिल करेगा। जो कुछ भी असीं करन दे आदि हां, शरीर चो निकल के रूह ओ ही कुछ करना चाहेगी, पर कहंदे ओ शिंगार नहीं मिलेगा। भोजन पाओ ना ठंडा पानी, ना कापड़ शिंगारो, तो हशर की हो रहा होएगा, गल संगल सिर मारे उपो, गल दे विच उन्हां जमा दे कहंदे संगल पए होणगे, अते सिर दे उत्ते इस दे मार पै रही होएगी। ना दिसे घर बारो, फिर उसनु दूर दूर दूर दूर लई जांदे जाणगे, अखीर जिसनु अपना घर बार कुछ नहीं फिर दिसेगा, सब कुछ दिसना बंद हो जाएगा। ये किथे खप जाएगा इसका कोई पता नहीं चलेगा। ना दिसे घर बारो, उदों इसके चित विच इतना पछतावा आएगा कि काश मैं ऐस हालत च पैण तो बच जांदा अगर मैनु पता होंदा। महाराज जी आखदे ने, अगर हुण तू सोचे
ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਵੇ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਜਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਭਾਰੋ, ਫਿਰ ਅਤਿਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਭਾਰ ਹੈ, ਭਾਰ ਹੀ ਭਾਰ ਹੈ, ਭਾਰ ਹੀ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜੰਮਣ ਨਾ ਹੀ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਭਾਰੋ, ਐ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਐ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜੋ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਧਮ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜੋਲਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी। कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहूं सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़के कह दियो आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आ। ये पहल तू करनी है। प्यार असा देना है, लेना नहीं। देवे तो ठीक है, पर असि कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए? ना भाई, वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया एको ही पुकार है, केड़ी

गायत्री को गुपत जप्यो, कऊ हो के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहूं को कुकाब होय के पुराण को पढ़त मत, कतहूं

तो देते हो, कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देते हो, कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेते हो, कतहु विचार अब विचार को विचार तो हो, कहूं निज नारक पर नार के नकेत हो, कहूं बेदरीत कहूं ता स्यों बपरीत कहूं।